झूमता मौसम मस्त महीना भी आप सुन रहे थे। लता जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले थे। ये दोनों एक और सुंदर सा गीत आप सभी को सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवरिश से।

मन्ना दी की यानी मन्ना दी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे मस्ती भरा है शमा फ्रॉम द मूवी परवरिश से हमने पेश किए हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा आरजू है, फिल्म का नाम। लता जी आपको सुनाने वाले थे और म्यूजिक दिए हैं शंकर जयकिशन जी। उमरा है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। हम दोनों फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। बॉम्बे का बाबू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथी न कोई मंजिल।

अभी आप सुन रहे थे साथी ना कोई मंजिल, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। बॉम्बे का बाबू है फिल्म का नाम। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दूल्हा।

जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दूल्हा दुल्हन से हमने पेश किए हैं वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा एक बार फिर से मुकेश प्रोग्राम में आ रहे।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, द माइटी मुकेश जी की आवाज में। दीवाना हुआ बादल कश्मीर की कली है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दीवाना हुआ बादल। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली से मोहम्मद रफी जी आपको यानी सुनाने वाले थे। छलके तेरी आंखों से शराब और सियारा, आरशू है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने

छलके तेरी आंखों से शराब और सियारा। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। दीवाने का नाम तो पूछो, मोहम्मद रफी जी फ्रॉम द मूवी एन इवनिंग इन

0: मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे दीवाने का नाम तो पूछो। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी एन इवनिंग इन पेरिस से अफू खुदा।
1: अफू खुदा।

जब जब फूल खिले है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हमको तुम पे प्यार आया, आँखों में कयामत के काजल। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी किस

आंखों में कयामत के काजल भी आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी किस्मत से। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। और जरा सा हम देखें तो फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। जाने अनजाने है फिल्म का नाम, और लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जी हाँ सुनने वालों, मेरे हमदम मेरे दोस्त है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं ना जा कहीं अब ना जा दिल के सिवा।

फ्रॉम द मूवी मेरे हमदम मेरे दोस्त से अभी आप सुन रहे थे। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज़ में वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़िंदगी चार दिन की है, दो दिन तुम्हारे हक में, दो दिन तुम्हारे खिलाफ। जब तुम्हारे हक में हो तो गुरूर मत करना, जब तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र करना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, फ्रॉम द मूवी कभी कभी से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मैं पल दोपहर का शायर हूँ किशोर डा प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों और गीत का बोल है कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। फ्रॉम द मूवी लावा से आप सुनेंगे किशोर डा की आवाज़ में।

किशोरदा प्रोग्राम में आपको सुनाए हैं, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे के इस्तेमाल करने के लिए नहीं।

मुझे आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, जाता हूँ, मुझे अब ना बुलाना। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी दादी माँ से आप सुनेंगे। लेकिन गीत से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। कुदरत का कानून है, दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते।

आप सुन रहे थे चाहता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए ये गीत हो जाए।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखे, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब दे देता है। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन।

अभी आप सुन रहे थे ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। कुछ मजबूरियां रिश्तों को ख़त्म कर देती है, कुछ मजबूरियां रिश्तों को ख़त्म कर देती है और कुछ रिश्ते मजबूरियों को।

आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनती रहोगी तो लोग भूलने यानी तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। बनता परवर थाम लो जिगर।

चांद सा रोशन चेहरा भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। रिश्ते छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते ख़राब हो जाया करते हैं। लता जी आपको सुनाने वाले हैं दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बूझेगा क्या।

में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला, ये पूछेगा क्या। अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में। सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, चलिए मिलकर फ्रॉम द मूवी कठपुतली से आप सुनेंगे, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया।

जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोवोगी तुम तो ना रोएगी दुनिया। किशोर डा आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किए हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। फ्रॉम द मूवी पिया का घर से आप सुनेंगे।

ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। पिया का घर है फिल्म का नाम। किशोर आपको सुनाने वाले थे मेरा प्यार।

पर वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी।

महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर, यानी ये रात फिर नहीं आएगी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, नर्तक ये है फिल्म का नाम, आशा भोसले जी के साथ में। सरासा हम देखे, जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नर्कती यानी नर्तकी से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आकाशवाणी रेडियो पावन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। रोज की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपकी सेवा में स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर।

यहाँ से आरंभ करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा के साथ अरवो भी पेश किया जाता है। देनहाख देनहाख के रहने वाली श्रीमती

दनाह के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से शुभ दिवस कहते हुए सुंदर सा हनुमान चालीसा यहाँ से हम मिलकर और श्रवण

श्रीनाम वाली फोनो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में स्पॉन्सर।

सुरीनाम और लिफोनो मैन का नाम हो कि इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में पेश किया गया। हमें इंतराज लेत श्रीमती लैला बाबू राम जी की तरफ से।

सबसे बड़का कानून श्री भगवान का घर है। वहाँ पे ढेर नहीं, अंधेर नहीं, बस न्याय होता है। जो जैसे करता है वैसा ही उनको मिलता है। भगवान के साथ ऐसे ही हुआ है कि वो सब धरती पर आकर और मनुष्य जन्म में हमको भी दिखाई है। तो सोचो, हम मनुष्य जो है, हम कब बच पाएंगे? सुंदर सा भजन रफी जी की आवाज में पेश किया गया है देन हाँ से श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ।

आप जहाँ बस नजर उतार कर देखो वही भगवान है। भगवान देखने से नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हो आप। पेश किया गया है दनाख मकाइस रत नंबर 6 से हिंदू पास स्कूल फाहुन फरेनिंग अलखमेन हिंदू ऑनरवेज नीदरलैंड की तरफ से। जो कुछ है तेरे दिल में, जो भी कुछ है

अवश्य हमको मन की शक्ति देना, खुद दूसरों को जय से पहले खुद को अपनों को अपने आप को जय करे। पेश किया गया है दनाखलेस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल इन ग्रोथ एंड फ्रूट मालिक इनका है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्मा है, शब्द शब्द में सार, शब्द शब्द में सार, शब्द शब्द सदा ऐसा कहो, शब्द सदा ऐसा कहो जिसमें जिसमें उपजे प्यार। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से हम लेकर चलते हैं दिनांक 1 श्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में है उनकी तरफ से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में यहाँ श्रम।

और वही प्रेम जो आप अपने मन में बसा ले तो ईश्वर आपके मन में आप में बस जाएगा। सुंदर सा भजन पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, देना एक नहीं तो श्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है। रोटरडाम होगफ्लिट टेक्सस वेग से, रोटरडाम होगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से, साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मकरसराज सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के, श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से हम यहाँ श्रवण करेंगे। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट

दिल छू जाने वाले, ये दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा भजन हमने यहाँ मिलकर और श्रवण की है। पेश किया गया है रोटरडम हुफली टेक्सस वेख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित सुभाष महावीर ना माफ कीजिएगा मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से ये सुंदर सा भजन पेश किया गया।

बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, आपका तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा।

सुंदर सा भजन पेश किया गया है देन अखलास का फेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खुद हैंडल बेफे, इनका मालिक खुद है आनंद अर्जुन शर्मा। फाहोन रेडियो की डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

0: बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, लहरों में रहो या कश्ती में रहो, मेरे प्यारे सुनने वालों, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, पर रहो भगवान की भक्ति में। जहाँ से हम सभी का नैया पार होने वाला है, फाहों रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल, सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया। देने सुनने के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है और हम फिर आगे में आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए।

0: De Starring van Jenny.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी, जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते, हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

उसने पराए घर में जाके अपनी सेज सजाई है। अब वो मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ निभाने को मेरे आंसू साथ है मेरे, उसके साथ खुदाई है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आंखों को, आंखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एन खांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सैदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कैंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। Het brengt alleen maar negatieve energie. Het trekt ook negatieve energie. Je hebt baat aapko bataya diya gaya hai vastu shastra ke anusar.

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा कर

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाख दुच, इज दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखाम। हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड रोग का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते थे।

तुम्हारी है सुनाए आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जा, सुनते ही जा, सुनते ही जा, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सेलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। आप है संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

स्वागत है आप सबके एक बार फिर। स्वीकार कीजिए शिविका शांता के प्यार भरी नमस्कार। यही आशा उम्मीद है आप यहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे।

समय, ये आपको मुबारक हो, बधाई हो। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहती हूँ भी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि इस दुनिया में जीना हो तो

आप बंगले के पीछे सुना दी हमको लता जी। फिल्म का नाम जैसे मैंने बताई है, फिल्म का नाम समाधि। नहीं खन तीन तुम से फन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

आपका गीत यहाँ से मैं चला दे रही चलाती हूँ। प्यार में कभी कभी शैलेंद्र जी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम चलते चलते।

फिर हम चलते चलते से आपके लिए यहाँ से हमने सुने हैं शैलेंद्र जी और लता जी के आवाज़ में।

0: महेंद्र कपूर हिट्स सॉन्ग हमरा से सुना दिया कि नीले गगन के तले।
1: ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति नीच। ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए, नीच ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए सत्य की खोज करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता जन्म पर आधारित भेदभाव को सिरे से नकारता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात समाज का विभाजन गुणों और कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। शास्त्रों के अनुसार नीच वह नहीं है जो किसी विशेष परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि नीच वह है जिसकी प्रवृत्तियां तामसिक हैं, यानी वह जो अज्ञान, क्रोध और हिंसा में लिप्त है। महान संतों और स्मृतियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसे उच्च या निम्न बनाते हैं। शास्त्र चार प्रकार के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। पहला, कृतघ्न, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता। दूसरा, अधर्मी, जो जानबूझकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा, अहंकारी, जो सत्ता या धन के मद में अंधे होकर मानवता का अपमान करता है। चौथा, असत्यवादी, जिसकी वाणी और विचार में छल हो। यहां तक कि महान ऋषि वाल्मीकि और वेदव्यास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि जन्म गौण है और ज्ञान सर्वोपरि। सवाल उठता है कि फिर समाज में यह भेदभाव आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों और मध्यकाल के दौरान लचीली वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या की और नीच शब्द को जन्म से जोड़ दिया। यह धर्म की नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विकृति थी। आध्यात्मिक रूप से हर जीव के भीतर एक ही आत्मा का वास है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यदि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो कोई नीच कैसे हो सकता है? वास्तव में नीच केवल हमारे विचार और संस्कार हो सकते हैं, शरीर या कुल नहीं। आज के युग में नीच शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अधर्म भी है। हिंदू धर्म की असली सीख वसुधैव कुटुंबकम में है। श्रेष्ठ वह है जिसका मन शुद्ध है और जिसके कर्म समाज के कल्याण के लिए हैं। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। नीच ये शब्द हमारे
2: वीडियोस समाज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
3: तो मेरे राजा, राजा,
4: राजा।

0: जॉनी मेरा नाम, जी हाँ जॉनी मेरा नाम 1973 में पिक्चराइज है। हेमा मालिनी, देवानंद इसमें स्टार कास्ट है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: जी हाँ, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
2: हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है। और जब हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो कभी कभी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? असल में बुखार हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये हमलावर पदार्थ, जिन्हें पायरोजन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजते हैं जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पायरोजन के प्रभाव से हाइपोथैलेमस शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर एक नए ऊंचे स्तर पर सेट कर देता है। जब ये थर्मोस्टेट ऊपर सेट होता है तो शरीर को ऐसा लगता है जैसे वह ठंडा है, भले ही शरीर का तापमान बढ़ रहा हो। इसी कारण हमें ठंड लगती है, कंपकंपी होती है और शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। ये बढ़ा हुआ तापमान कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रतिकूल वातावरण बना देता है जिससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है, बुखार की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जैसे पैरासिटामोल या अन्य एंटीपायरेटिक दवाएं? ये दवाएं मस्तिष्क में PGE2 नामक रसायन के उत्पादन को कम कर देती हैं। यही रसायन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट करता है। जब PGE2 कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है और हमें राहत महसूस होती है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, गले का संक्रमण या पेट का संक्रमण। लेकिन कभी कभी सूजन से जुड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ दवाएं, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या हीट स्ट्रोक भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसलिए बुखार सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये अक्सर एक संकेत होता है कि हमारा शरीर किसी चुनौती से लड़ रहा है। एक तरह से बुखार हमारे शरीर का रक्षक है जो हमें चेता

0: लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में ये मौसम भीगा भीगा है। नेहा तीन सीफन तक में पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है और फिल्म का नाम है धरती। फिल्म धरती से
1: इंसान अलग है, किसी का रंग दुनिया में हर इंसान अलग है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला। दुनिया में हर इंसान अलग है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला। किसी की आंखें नीली हैं तो किसी की काली, लेकिन एक चीज है जो सबसे पहले हमारी नजर में आती है, हमारी लंबाई। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग 6 फीट से भी ऊपर होते हैं और कुछ 5 फीट के आसपास ही रह जाते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे DNA में। विज्ञान के अनुसार हमारी लंबाई का लगभग 80% हिस्सा हमारे जीन्स तय करते हैं। यानी अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आपके लंबे होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी का 20% खेल है हमारे खान पान और माहौल का। बचपन में मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स हमारी हड्डियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई बढ़ी है, क्योंकि अब हमें बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नीदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, जहां पुरुषों की औसत लंबाई करीब 6 फीट है। इसका कारण है उनका संतुलित आहार, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन और एक स्वस्थ जीवन शैली। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और बोलीविया जैसे देशों में औसत लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके पीछे है वहां की जलवायु, खानपान और जीवन शैली का असर। तो सच ये है कि हमारी लंबाई सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि जीन्स, पोषण और एनवायरनमेंट का एक अनोखा मेल है। लेकिन याद रखिए, लंबाई नहीं, आपकी काबिलियत आपकी असली पहचान है।

हाँ, चोरी पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गया, उनसे मिली नजर। झुक गया आसमान से, निकाल दिया गया है लता जी के आवास में। कलाकार इसमें है शायरा बानो और राजेंद्र कुमार।

0: कहाँ से हम सुनेंगे अगर हम शराब पीते हैं तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है और उसका असर क्या है?
1: क्यों? एक घूंट शराब पीते ही कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के अंदर केमिकल तूफान शुरू हो जाता है और शराब आपके ब्रेन को अंदर से कैसे बदल देती है देखिए, पहले 5 मिनट में जैसे ही आप शराब पीते हैं वो आपके पेट से सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और सिर्फ 5 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल है और आसानी से पानी में घुल जाता है। हमारा ब्रेन 70-80% पानी से बना है, मतलब अल्कोहल को सीधा रास्ता मिल जाता है। 5-10 मिनट बाद अब शुरू होता है असली खेल। यहाँ अल्कोहल बढ़ा देती है डोपामीन, जिसे कहा जाता है हैप्पी केमिकल। शराब पीते ही आप अचानक रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर हैप्पी महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस गायब, टेंशन खत्म। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10-20 मिनट बाद अल्कोहल बढ़ाती है GABA, जो ब्रेन को शांत करता है, और ब्लॉक करती है ग्लूटामेट, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है। नतीजा, जजमेंट कमजोर, इनहिबिशन खत्म। आप वो बोल देते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं बोलते। गलत फैसले, रिस्की बिहेवियर, सब यहीं से शुरू होता है। फिर 20 मिनट के बाद अब असर पहुंचता है सेरेबेलम तक, जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। तब चलते वक्त लड़खड़ाहट, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, रिएक्शन टाइम धीमा, यानी आपको नशा हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझ कर फैसला लेता है, यानी आपका कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा पी ली तो। अब बारी आती है हिप्पोकैम्पस की, यही मेमोरी को संभालता है। रिजल्ट, ब्लैकआउट, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या किया। और ये सब सिर्फ एक दो ड्रिंक से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, ग्रे मैटर से सिकुड़ सकता है। नुकसान धीरे धीरे शुरू होता है।

समाचार में ये समाचार भी है कि मेरदर अवतोष खान इन फ्लामन ओप रेखियो कौन रेखियो के हजारा हम भी आपके साथ देखे तो अब मेरदर प्लेकन इन द रेखियोज़

शांति ओम से हमने श्रवण की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए पेश हो रहा है। इस बार है फिल्म देवदास।

ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान की फिल्म देवदास। इस बार आपके लिए फिर एक सुंदर सा गीत चुनकर और रखी हूँ। उससे पहले तेरा नाम रहे जुबां पर, तेरा नाम रहे जुबां पर जैसे चांद रहता है आसमान पर, दिल में बसी तेरी याद की महक। ओहो, दिल में बसी तेरी याद की महक, हर सांस में तेरा नाम लिखा है, हर सांस में तेरा नाम लिखा है। तू दूर है पर इतनी करीब, तू दूर है पर इतनी करीब, हर पल तेरा ही पैगाम लिखा है। हम दिल दे चुके सनम।

नी बुरा हम दिल दे चुके सनम, फिल्म का नाम। इसमें स्टार कास्ट है सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, कविता कृष्णा मूर्ति जी के आवाज में साथ दे रहे थे कारसान सर घातिया। जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, यादों में कुछ लोग खास होते हैं। यूँ तो वो दूर होते हैं, यूँ तो वो दूर होते हैं नज़रों से, पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर वो लोग बहुत खास होता है जो बिना रिश्ते के कोई रिश्ता निभाता है।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों के चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि आप पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान। कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ये बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

ओ दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाब की महक भी फीकी लगती है, गुलाब की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है? वो परमाश्री मोहम्मद रफी लपेटा है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौड़ जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमेक सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिट इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राए, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

तो दोस्तों हम तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे है, कभी कभी खट्टे है, और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। हम तुरंत चलते हैं और कहां चलते हैं, वाटरकान सुरीनाम की ओर। हमारी जनता सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोसद होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारे जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक में से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन तो पानी दोस्तों, साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन न खाली बारिश भैया, स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया, स्कूल के जितना यफराव मिस्टर रहा उस सब स्टॉकिंग कर ले रहा, कारण कि उस सबके पैसा ना फरहो करत रहा था। अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करी, इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिस स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहू सब मांगे, अपन लूंस फॉर हुकिंग मांगे हैं। अब वे ऊ ना शुरू भैले भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के हैं अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एड ब्लाई फॉर रिएक्सी फंड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट रिएक्सी ना दे चीज सब मांगे आक्सी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सुरीनाम के खजांची है, वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफ्द्राट लूटे रहा, सुरीनाम से पोस्पार बैंक के क्रोमो लूटे रहा। तो हम लोग तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे ना भूलियो जा कि के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सुरीनाम के 5 तारीख यूनी 2017 तक के सेंट्रल बैंक के कम कर्तन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आए लेगो प्लेंचे पे, और फंड बैंक के प्लेंचे पे आए ले और सब हुआ पे अब्बा और बोले हैगा आन दाख फ्राग फॉर सोरखन फ्रागन सिग्नालन फॉर मीडवर्कर्स ओवर द हेयर इन द फिंसी है, इसके बारे में यहां जा रहा है। और बोले हेड बस्टूर नुम द एड ब्लाइफ एंड फॉर रिएक्सी टू लर्स टैलन एंड सेक द ऑनटविकलिंग नाउ लेटन द ब्लाइफ एंड फॉलखन। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में हंड्रियन फेफ तक यार 153 हाँ हंड्रियन फेफ तक यार हो गया है सुरीनाम देश में बहुत बहुत, यानी कि अन अक्तिफित है यहाँ दनहाख में भी अक्तिफित रहा हम हमारे

लाइन पे म्यूजिक बजल है और याद भइल है हमारे जो बाब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट आर बेदस जो लाला रुक पे 1873 तक में सुरीनाम में गई है, तो वहाँ के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं हों द्रियन फाइव तक यार हो गया है। तो बताओ द और खान शांसी वैस एरोप द इस्त हिंदुस्तान से एमी खराची जो हाँ बोले हैगा ऑन बेरिंग इन ऑन टीकर है एक uitdaging van een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling in ons land Suriname. Mensen door kuske काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके doorzetters vermogen रहा तो जितना अभी हमारे औदरे है आप लोग को बाप दादा हमारा तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हाँ उसको हम नहीं जानते दोस्तों, तो ये सब तो भारत देश के रहा। तो बताए गए रे बाबा माई मोनी मेंटल लगे सब गईल है न्यू आम्स्टरडम कॉमोवेन में सरमक्का खरोडिंगन पे गईल है निकेरी में सब भी गईल है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाख कर ले बा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम की ओर। हाँ तो आप लोग जानो हैं ओएएस के बोले ओ मिनिस्टर मेलफिंग बोवा बैतलांस साका के बोले हैं का ओएएस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदीन रहा पहले फिर हपी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलांस साका के उचल गए फिर ओएएस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया। तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवाण वक्त रखेरिंग इज द आउटकम्सन फॉर अ मोगलक अंडरसुक अफ फॉर दैट द डेफिनेटिव स्टैंडपॉइंट वर गनोमन द बाउफाल उन खाली अगोरे है कि कब ये नमिया के बारे में छानबीन हुए। तो बतावे हैं मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नीट इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेटलक वारहेट इज इन द क्वेस्टी फॉलकस हेम साल इवेंचुअल अंडरसुक मुतर ऑफ वेसन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक हुए हुआ एस में बताई गई है वीस एरोप द रिक्वेस्ट की ओक अंडर और दिस को वो तेरे ने मिसे रेसेंसी फरकादरिंग। तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोन जाने हैं स्ट्राफ रेक्टलक जो उनसे बन मांगे हैं ओ एम अरे ओ एम पठाई से गा कहने के दे नामे के हम लोन के माख है फरोरदेल करके अंडरसुक करके बारे में बेकर बारे में बराइट हम आप लोग को बताएंगे हमारी जनता की तोरिया कैसे हैं। तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन सूरीनाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है न्यू होप्स तो के नखफसीदनेस तो ये भी एनडीपी भी एक बारे में बतावे है दोस्तों। साथ साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में। तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हाँ गाय ब्लास्टिंग कु के बारे में यहाँ पे

0: हमारी जनता, तो गीता बिहारी आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता, हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। तो बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे, सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहां पर है दोस्तों, जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई, यहां पर बताए गए हैं रोफ जो है, चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले हैं सिपाही के घर में से, सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए। और आगे इंस्पेक्टर के गए ऑन द सुक करे, पीछे सिपाही के घर, सब इतना ब्यूरो के बीच में से कानी कितना दे, यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया। हाँ, कितना क्विक चोरी हुई के देशवा में से। ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फैल है, बस वही में से चोरी है चोरी है। तो सिपाही के मीजा वर्क से भैले कि ना भैले भैया, ये तो 100% है। सिपाही यहाँ पे 24 घंटा रे बड़का कंटेनर में भैया, उतना ढेर क्विक चोरी हुई गई। एकर बारे में दे आराम है सब खोज बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहाँ टोनी इसरी भी आ गया है। तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के, ओकर लगे देयना के लगे ओएम, यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इतीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे कि ऑन सुख करी सकवा के ना। और इतीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अबे तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे ना में, और घीचा तानी ए बल वही में। और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा, यानी कि गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है, बोले जैसे पहले बचाया रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है, बोले उ सब चीजों करे है। इतना क्रासी गए भैया कि देयाना में गए है सब, और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे केस टेम करी सेगा देना में कि इस फरफोलक कोई हुई कि ना होगा, एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड को कर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और सोमोहार जो इंस्टार फन बस्किल किंग हो गए है। अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अदमीरों जो नया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा, स्टेम करी सेगा कि स्टार्स स्टार्स बस्कुल लुकिंग में सोमो हार्जो और काबुल हुफद्रात और नूर मोहम्मद के स्टार्स फन बस्कुल लुकिंग स्टेल कर सके ओएम के चाहे जाए के इस सब के अंदर सुख करी कैसे है। तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है, तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के फोर्डरिंग फन पी के बहंदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनार तीनों नमुआ जो ले रही है सबके यहीं जाए के अब अंदर सुख के। एनडीपी वेतन फ्रागन खस्तेल ओवर द फॉलीड खेत फन द दोषे, एनडीपी बोले हम ना मांगेला एकर बारे में बतिया, बोले हम मांगेला फॉलीड दोषे हुए वार फन गया दिन। और अनमियन बोले तो के ना उफते सब बोले तू अंदर सुख थोड़ा बाटे तू पी के ना बाटे, बोले पी के ये तो के कागज पठाइस के रमिया खमांगेला तोर अनमिक देनार में अंदर सुख करे ओमदा तू कुछ करी से तो हमार कामना सबके फरोर दिल के हम लोग के काम है। तू स्टेमिंग देवे के पीखे के ओएम के रेक्टर के काम है बपाल करे के। तो मर्डर है एंड लख opgelucht, mensen. Heel veel mensen zijn opgelucht. Kisagwa onderzoek hoi. Niet een mooi tje is op deze loot loot chori karker. Or mouch kare he bhaiya. To VHP, NPS, Web, Abob en A20 benadrukten juist DNA ke. Ki rechtbank is niet. Bole ki geen rechtbank is, bole DNA, bole rechtbank na he. DNA is geen rechtbank en niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onafhankelijke rechter uiteindelijk ik erbare mee bole ke. Oh, NDP, chorwan ke khali bachawe, bhaiya. Chorwan ke khali bachawe he toni ki ikke na karte, ikke na karte, ikke na kar. Aan chor log ke bachawat, bachawat. Hum log ke desh barbaad hoi ge. Abbe ohi plat वा इस ड्राई करे हैं तो फरप्लेक्ट ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे की ना जे ना मांगत रहा उ साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि तह फोर्से तर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर्स वार्डी में फोर्से बोले जा तू बोर देख कर बोले हैगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर पीके टॉट इन स्टार्ट फ्रॉम बस्कुलकिंग स्टैंड फ्रॉम थ्री फॉर्मालिक पॉलिटिकल अम्तनारन daarin is voldaan we wettelijke vereisen op grond van artikel 140 grondwet in staat van de beschuldigingsstelling van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijke onderzoek voorzetten. Dit is best een hele goede nieuws mensen die op kabel hega OM vrijbaar ik erbare mee onderzoek kare ke bare mein PG jo hai hum log ke Suriname ke straf lekt ka onderzoek kan kunnen verder naar de besluit van TNA de ekar bare mein an jo an PG hum log ke yahan pe apart batai se ki ab us sab ja sab ke onderzoek kare ingestemd met de vordering van de PG aur bataye gaye hai gaat oud minister Klimmer Hoofdraad openbare werken nationale Noor Mohammed ke और नूर मोहम्मद के बाद में ब्रुंतो सो मोहार्जो के और यानी कि सबके फॉरदरिंग फॉर द पीके वेदन ऑफ नेकम आर्ट 2026 बे देना देना इन खनि नाद बहंदली फॉर फरसुकन दिस वीक स्टेम द पार्लियामेंट इन में 3 फॉरदरिंग एंड आर्मी इज फॉलोस एट ओएम फॉलदान फॉर द फरेसर फॉर आर्टिकल 140 फॉर द ग्रंथवेद तो दोस्तों हम बोली आप लोग के हम छोटा रूप में बताई कि शकवा कैसे है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता तो ये जो मलाई है वरुण तो भैया बहुत जोर छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्ट होइए और बोले उल्टा पूजा ने सब कोई मेर दर है तो के बस्कुल दख कर दी तो यहां आपरे बोली सेगा नीमा स्टार बोफन हेड फॉलोग ओ वरुण तो नीत तो बोले हैगा आप इस एडवोकेट लेके अपन साख लड़िए पेयर असेंबली फोरसेटर एन असेंबली लेट और समोहार्जो पॉल समो ब्रंतो समोहार्जो एस्ट एन एकन स्टार फन बस्कुलकी इंस्टेलन अपरे वो पतीकन कर दे इसकी मख है ओके वो तू जाने अकेलु थोरो बोलेगा कि हमें नमक तुल के अंदर चुप करे खरोते तेज बोली सेगा कि सबके चाहे अंदर सुख होवे के ता अपरो तेकन कर दे इसकी हां चाहे अंदर सुख होवे के तो दोस्तों सूरीनाम के दुआना भैया आप देखो तमाशा कौन चकलज भाई ले भाई कौन चकल एगो औरत के भैया एगो औरत हैगा दुआना मेजर वर्कर भैया फराज भाई ले फ्रॉ केयर ट्रिक फन वैकेंसी एगो औरत वैकेंसी से लौटल भैया कहां गईला लौट के तो भैया सुंदर हीरा आपको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेसी के जो आज जो 5 यूनिक के होंद 3 एंड 5 तक यार भइल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी हैं रेडियो फाउन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहां भैया दुआन दुआन भैया फर्रास हो गए कि औरत गई ले वैकेंसी से और वैकेंसी से लौट के आई ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमनो सूरीनाम से आईला ते का बोले मछरी लाईला भाई मछरी लाईला कड़ा बोल आईला अब ई औरतिया गईला वैकेंसी से भैया एगो स्विट्जरलैंड दिस इज व्हाट अ फ्रॉ इन द स्विट्जरलैंड प्लेस टाइंग दिस वीक दा दुआना हट एर इवन ड्रग मी भैया दुआना मीडिया वर्कर्स जो रहा बे द ग्रेंस ओवरगांग फॉर टाइंग इन बुधवार के एगो बस्तेल बेशा उज्जर उज्जर आयल है सो वेल्डन वेतन वाद शफेर दी तरह को फन फकांसी फरफूर दे बोले फक कौन ची लाई से बोले द फ्राउ इन एट बेशे खाफ दार गहोर आन एर बखोन हर बखाच आइट त पकन शुरू करी से अपन बखाच आइट पक कर बेसुआ में से भैया 55 कोफर लेके आयल है भाई फकांसी चला उटल है अब बोलिए का धनिल भैया दुआन बोले अब कौन चकल्लसी भइल है हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहां बताई भैया, एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ बौश बरख तो लोग जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ सेल्फ मोर्त बरख ओकर नाम चाहिए ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया, इरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के अनमी गैल है भैया बौश बरख पे, तो हुआ से टेलीफोन करे और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है न बौश बरख में से कि अब हम जाएला कूदे, हम जाएला कूदे भैया अपन फैमिली लिट से है नेट फॉर नेम दैट फैमिली लिट नाम से पॉलिसी ओवर फोर फॉल हिफ के इंफॉर्मेट और बताई गई है का रात के बातचीत है वेल्थ का बेल्फिया वीडियो का स्प्रेक टाइटल का स्प्रेक ये भैया बतावे है का हम बॉस ब्रेक पर से बोले हम जाएला कूदे, बोले देखियो तो लोग कैसे हम कूदीला तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे कोर्ना दे से मेल लगे वेर द फॉरबिडिंग फॉर ब्रोकन बोले फॉरबिडिंग व्हाट रुक गए और ओ हीरो से यरमिया ना भेटा ने भैया कोई के ना मिलल है सेस दिन इसर खीन कांटेक्ट मेरे खबीज में ने बे तो फरमूड लग इस दे से मान नतुल इन हेड वाटर ख स्प्रोंगन में मेंस हम जाई तेरी फनत हो ख है स्ट्रैट के बारे में बहुत भैया आफत मचले सन्ना में जोनन में सन्ना में गाड़ी चलावे है आपके तो पता रास्तावा में भैया हम का बोली जैसे काउ फूतू होइगे आसफाल में काउ फूतू जैसे होइगे भैया मां काउ फूतू में तो अब तो गोड़ घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई स्लान हाउस स्ट्रैंड के बीच में फनो होख है स्ट्रैंड कि आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुस जाए जो समय पे फिर यहां पे रहा भी ई प्रॉब्लम हुआ रहा तो ई रखे रिंग हुआ लोन क्लाक करत रहा भैया अब वो ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए है अब जनता उल्टे गरियावे है एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कौन ची करे है। तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घरता खदेट लग ऑन कफे 105 तक मीटर अब बोले हैगा स्लेख तुस्खान फन वेख द अफ्लोपन प्रियूद अब इसे मांगे हैगा फन रूक है बहुर तो दृक्ष बरीदन वीखन उतरा ओतो हुआ चले फन रूक है स्ट्रात में और उसे मांगे 4 तारीख यूनी के 4 बजे वो 6 बजे लेक मांगे बंद करे टुकवा और एक टुक्का मांगे सेवन अस्फाल तेर करे भैया वही बात है वेर बुरुकू और पूर्व बुरुकू हम लोग निगरे में बोली ना वीर गुरु को चपटावे भैया सुंदर भाई, जैसे कि कोई जब ढोल बजावे और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है, ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है, तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना। और जो नरमी नाचे भैया, जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है, तो उस समय पे मोटा सौको को पैर के अच्छा करे, ऐसे भाड़ी भाड़ी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया, जैसे चिरई हगे है चारों बगल वैसे सबन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे, देख हम बना देली बाटी। तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइम ओके परमानेंट ही लमाल असफल तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनहू को हिस्त्रात बना देवे है। तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे है, तो वहां पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है। पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए है, आदमी लोग के वनिका सब बुड़ल है। आज की हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है, लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है। तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया, हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रास्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया। जब हुआ गए ले पिकादू स्त्रांत में तो बताए गए है वहाँ पे एगो त्योता फित स्त्रा भाई और बोले वहाँ पे दकते गए ले वैसाख है दाद फर मुडलकस के तो सामन में द अंदर खराई से तो फत्रों के अंदर एक तेम तुरतो ना दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए इसी नाम में स्कोटन खलोस बे बार हिल्स को फोन ने ऊपर पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज ऑन फेलक मेंस बार और में ना जाइयो हम में भी एक मन ये ठंडा भी रहना तो अपन घर ये मंगाइयो भैया ठंडा ठंडा पारवो बीर और ओके खूब नच से घरे पियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोड़ करोड़ ही मरियो ठंडा ठंडा बीर धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है दन है पी ही मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दियो भाई वन असाई तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परसिये माई के लूटले वे है दिस ओहु चीजवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है इत बताईला। अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ला मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस खोसों थे के अभी का बोले भैया श्री नाम में सिस्टर सिस्टर भैया ना है सब खोजे फर प्लीक के नख के तो मिसी काबा का बोले फॉलोस खोसों थे के कि अब वो का करेगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्त पे मतलब लांटी के कोस्त पे अपलेडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फर प्लीक के नख तब बोले जेके हम लोग लेस देबे तो के फर प्लीक के पांच छह बरिस फर प्ले खसर नाम में काम कर ओकर बाद में मंगी बैतलान तपन जाई के काम कर सके है अंदरी मिसी काबा के प्लाने भैया ऐसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सबके मोई से पकड़ ले रू मांगे उस सबके अपलाई देंगे भर देवे पांच बरिस फर प्ले कर देसो हमका ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैतलान में काम करो हैड फेथ दैट इज ओन ग्रोथ तो फ्राक इन बैतलेस ना श्री नाम फर प्ले कुंद के बात है भैया नीदरलैंड्स में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदुस्तान में फोड़ के तरीज बताई रही है कि एक कर प्लानिंग का है बोले हैगा फन वीक है फेद से देर तक दैसन ऐसे दी नीट के बता लें उसे उतरा है अपलाइडिंग तो बोले हम लोग भरब है तेज विन विस्तरा तीखी ओम दत में नीट मेर के उन हेवन दत वही मेंशन अपलाइडिंग फॉर हिट बैतलान द दाग वार ऑफ मेंशन हिट डिप्लोमा करेगा कि उनसे एंकलक आल इन फ्लिक्टेक स्टापन एंड वे खान। तो ये बात है हमारी जनता मिसी काबा के प्लान है भैया मिसी काबा का प्लान है ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मोई से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए। अब देखो भैया तुम लोग जानो सुरीनाम में दुकान में के आगे वॉट्स बड़ा गरम गरम बिका है तो हाँ गरम गरम वॉर्स हुआ बिका भैया, तो गरम गरम वॉर्स तो हम भी कीन के खाएल भैया मुर्गी के। तो यहाँ बतावे है कि असा जो आदमी वॉर्सोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया, का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉर्स पर कोपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉर्सवा कदमिया दागी समझाई नहीं वॉर्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर द उमर वॉर द नमान सेल फॉर यार दक सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन त्वे क्रिमिनील ओप ब्रॉफिस ते प्लास फर्स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेंस्ट्रात दैट बकेंस्ट्रात आज पिल्लू कोनो पिल्लू भैया बकेंत है पिल्लू के नाम से और कोनो के पिल्लू नाम है फॉर फॉल्क साल दे प्रोसेलिंग ओ पिस्तौल और दागी से भैया इस सब के फरियारी दुकान के आगे मनावत रहा सोना के केती घींच के लेके चल गए है द वॉर्ड फॉर कूपर फॉर सेट से खीफ वारना एगो वॉर्ड स्टिलिंग भइल है तेज कॉन्फ्रेंकासी फिर दे रोफर्स गरिक्ट ऑफ हिम ना है खुद रहने द फरदाख्त तरीक ना द ब्रोंफीस और एक केती लेके भाग गए बोले अब जाओ फिर वॉर्ड्स टू बेचो भैया वॉर्ड्स वॉर्ड्स करिए और बोले द खवन द वॉर्ड्स फॉर कूपर क्रिक डायरेक्ट सिपाही आई है डायरेक्ट ओमकीफिंग में सामन सेटर से अखतरफॉलिंग द ब्रॉन्सिस वारोप द फरदाख्त वान गफ्लिक वेर लेटर ऑन बिहेर आंगट्रोफन मोंप्लेसिर में मिलल है और तू जाने भैया ई सब चोरवन जंगल बरा जोर कूदे है भाई हमरो केती सपनी केरी में कपड़ी घींची से कपड़ी के लंडन छोट छोट घींच के और भगल है जद दौरैली भैया तू जंगल में घुस गए हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ केती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन खेती की ना जाई मां हम ना जा भी छुड़ी भकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है। तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं। तो हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं। आप लोग जानो है हुव दरात कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बकोक और सखवा चले है और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर्स सेक्टर अधीन से हु हेवती हुव दरात बराई अरे कैसे तू हुव दरात के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दोंदरदाख मेदाख के ओम पंबारे मिनिस्टर तोत हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फॉर्मल के मिनिस्टर हुव दात रियाद बरुंतो के तेज फरखादर रिक्त फे यहां पे पार्लियामेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक डील आइट मार्क दैट फन कमिटी देयर फॉर सुख हिफ ऑन द सॉक अन फ्राक अन देना फॉरसेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेटन ऑफ वेलकम वेसे द फॉर्मल के मिनिस्टर क्लीमर हुव दात ऑफ द होक्ता वास्क स्टेल फन द इन getiende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vordering zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter, hoe heeft u de heer Hoefdaad bereikt? Dat jogito puche bole tukaise bereiken le baate adhinwa. Voorzitter baate wadamia farar he. Bole tu bole sab adamien kit op de hoogste sal ab adhin bata. Tauna adhin reageerde en met een glimlach. U weet dat er zijn raadsmannen antwoordde. De parlementvoorzitter over bhaiya Mahabharat. Nou, ro padhal hai Gita kaise dhyan dewe hai ehi adhin aur yahan pe jhoot bole bhaiya bole hai ga tu jane raadsman advokat use o ka bole contact kari se hans ke bole hai NDB fraksi leader Ibu Jones concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel dus dat Jones tot de kutere bij jou kan ooker ooker voordeel meer het en meer kehna hij bij jou कि iedereen mag iedereen vragen stellen सबके mag je vragen stellen करके dat is het gewoon, mensen. Of je het heen bent, of je president bent, maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. Tony, Amskobhihem, Janneke, Hindustanse immigratie, ke, bahut, badhai dete he, tam sochila, jitne lok hamara Facebook pe he, sundar hira ranch lagan, aur chitra, aur Janneke isri, Tony, Raja Jodhya, aap sab ke liye ek geet hum chalate he, aur milke isko suna jai, ye he, hamare, परवसी के कहानी
1: 140 बरिस होई गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए ले सुरिनाम देश सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए, चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

वहाँ पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिर खेती बारी करती, तब ढेर पैसा मिलत, और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत

पीछे छोड़े के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम अपन देश हो गए सरनाम। अब हिया आई के अब इधर ही रहबे, जिंदगी अब हिया गुजरी।

0: दोस्तों, ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं, यानी कि हंड्रेड ए फाइव तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेशन के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउंड के तमाम कोलीगा डायरेक्टली लेडी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसे भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं। हमारी जनता, तो बातचीत ये है हो रहा है सुरीनाम में। आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सुरीनाम में, क्वेक के बाद हम करते हैं सुरीनाम में क्विक जो है चोरी भय ला भैया अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी, यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूसिशियन पॉलिसी के हनीश मरोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है। एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके तेकर बारे में ए बे जोन से अब ओम चटकल के कहे फरक हुआ। तो स्टेल अरे भैया तू बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हो सके। तब एक बारे में कॉर्पशेफ मेल्फिन पिनास जो है वुर्स दाखद्री यूनियो के गैल परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबरा अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल के साकर सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आइटम कंटेनर फन अफदेनिंग फ्राउडर एंड एंड ऑन ट्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में हुआ पे एगो पार्क है भैया, और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है ले के हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया। और जो पोकलेनवा गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले हैं कदमी जड़ जबर आका कानी से इतने फिर तक बेले कौन जी भैया जबर जबर बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे। और घर में अब सब इन बूदल है, सब इन बूदल है भैया, तूर तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है ओकर घर जहाँ पे उसे बीस बीस पच्चीस बीस बरिश रहे और गैल है सब घर तुराई गए हैं। तो एक बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गैल है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई कई सची युवा बंद कर दी से स्टॉप करी से। और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जो हुआ पोता जबर जबर अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकियन लेकिन उस सब के रहा कि स्कोतु सुरीनाम के ना अनपक क्रिसमस हो वापन ले के हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जगहियन जितरा हैगा त्वेई केर बिचान है भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फिला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा कॉम्प्लेक्स के। तब वो सबके घर तुराई गए एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है। तो अब यही स्कोतुआ मेल्फिन पीना स्कॉरप शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है और सुख गए करे क्विकवा कैसे चोरी भैल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर द्वेनिंग फन हुफिल है क्विक कॉरप शेफ नीम द साक hoog op en heeft direct aanvullende veiligheidsregeling laten treffen. Haar jetraat je hebt een container met haar. Sap hoe ze voor u zie karwa deze. Ab voor u zie to bhaile bhaiya bakyu kahan gaile voor u zie. Kasi naam kisi bhai biswaas na hai bhaiya pratap avtar. Biswaas na bhaiya. Bole hai JK moos ke dhariyo. Ar kaise bole bilar ke dhariyo. Na bhaiya hira dut rakhawe ek teka hoiga. To hamara fatingan Ram Raj bhi a gaya hai. Aapko bahut pyar se swagat karte bhaiya fatingan. तब धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे कैसे वो रखाएगा। तो कॉर्प शेफ अब गए ऑन सुख करे कि चीज कैसे है और इंस्पेक्टर बेन ऑफ द इन फ्रॉड किंग पिनास ओक ना आनखिफ्त dienst. Over bolle Mungra project kebare meek begel onderzoek kere. Dennis Villa Park zorgde voor veel vragen onder meer over de rol van de politie tijdens de ontruiming. Naar de aanleiding daarvan is middel een onderzoek gestart door een gespecialiseerde eenheid van de bestrijding van zware criminaliteiten kebare mee. To Villa Park Mungra to loketra ketra ghar en mee loke in boedel vaya jema irko lagal eis kasie ghar mee abbe sab in boedel he. कितना आदमी हैगा जोन के हुआ फकांसी है इस बनाए रहा अपन घर बनाए वेक रहा और ग्वाइटर लांत में काम करत रहा जाए जाए धीरे धीरे अपन घर बनावत रहा कितना आदमी जो रहत रहा भैया सबके घर टूट गए हैं तो बहुत दुख के बात हैगा सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाए तो NDP का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फॉर 3 years लॉस नीट इन 5 years ऑफ और बोले मोदर पुल के बोले चहटान जो ची है बोले जो धसान चहटान है बोले 10 बरिस के बोले 5 बरिस में थोरो बोले ओके अपलॉस कर पावे जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है। NDP कमवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल तरह दत्तर मुदर पोल नीत इन एन स्टाप कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर फरकलेकिंग एक्टर ओक फन टूपासिंग ऑफ द फिनेंशियल सिचुएशन रखेरिंग सन टोकिंग 2020 आंट्रो अब फिनेंशियल मुदर पोल दी टिल्ट गदुरे द 10 यार इज ऑनस्टान लॉस इन नीत बिन इन 5 यार बोवेन वेर द ईस्ट ट्वी रखेरिंग सियारन overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De Das Barisia, keer Chahata me lotatra, bhaiya. De appen Chahata jon me to lotatra, jab jau, apre ye gilas me duyo, ya permanent me na hoi, ye sapa to na hoi, bhaiya. Aadha sapa jo hove hai na, are to pins uhi me labhra jai kun aave hai. Jo same pe, far kiseng tai te gata Chahata wa labhedal kari ki sab ke ham, ka bole khub khawai piyai, ki ao hum me to lone, step करके फिन बैठाओ और उही में काम दिए दुनिया भर के आदमी लोग के और देशवा तब चाहटा में हुए तो जोन अदमिया ले देशवा तब बोली हेगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देशवा संहारी देते यार ऐठ है युवा भैया सन नाम के रवाज है युवा तो कैसे भला देशवा हमारे देशवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारा। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे NDP के समय पे ई परामारी बहु के देसी रहा भैया आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन निकल ले रहा कगचुआ तुम लोग जानो ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गया रहा रात भर में वही नूर सालीम है भैया वही नूर सालीम है। अब NDP जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एल्फी के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी एल्फी के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं एल्फी के मिनिस्टर तो बन गए हैं एकर बेटवा कौन चकल लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूर सालीम माइक नूर सालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फेटिल एंड फिशरी एलफीफे के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नराइन भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और ये लांटी के ओतो चलावत रहा बोले है तबे द्वई मानद वर्दन और बोले है को 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समन रूफ करी नूर सालीम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई यहां बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौन ची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे बाप है मिनिस्टर, और लड़कन ने देखो का करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है मन लड़कन, बाप माई के नाम गिराए दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और वो बेटुआ और करेगा और है वो बन रहा भैया, वो निकल है तो लड़कन। अब उधर एगो और भैया गाय चोराए रख के गया एथनल के बेटुआ, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन ओकर नाम गिराई देवे। ऐसे यहाँ पे नूर सलीम के बेटुआ एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एकर बारे में अनखिफ्त भैल भैया। पुलिस मांगत इधर बकेंदर बेदे फरदख्त न उफले सिद बेद ओएम द साक वेर फॉर फोरकल फोरकल एरसी लगे। और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंदन जो नहीं गया दिन स्फूर्त से ऊपर से भैया इधर पुलिस अंडरसुक ब्लैक दर फरदख्त से इन दिन स्फूर्त फॉर द मिनिस्टर फॉर एलफीफी फॉर प्लाट्सन टू से ने मिंदर यार के ब्रोंफिस से तीखन कुआमन फॉर द आनगिफ्ट सो द स्लाक्टोफर फॉर फॉर्स तीखन सेन विल सेन मी कनुमन एस ऊपर से के में सैंडल भी करी से भैया। तो लांटी ओ तो देवे हैगा मिनिस्टर लुक के कि ओकर बेटवा जाओ चलाओ और डाम पे पइयो कोई के रूफ कर लियो। ई हमारा देश है भाई, ई हमारा देश है। जनता हुआ ब्लास्टिंग भरे हैं ओतुआ के, जनता के ब्लास्टिंग से ओतुआ की ना है, और मिनिस्टर अपन बेटवा के देवे बोले जाओ रूफ करो। ई भैया कैसे देशवा चली, और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है ई सब फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मिस्टर मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोर देल। तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बहन ही एक अपील मालखिन फोर देल में निमान तो सच्चाई अन मीडिया मुत आलतेज फ्रेई कुन प्रात फ्रेई कुन प्रात जैसे है ये मुत निमान फोर ट्रैक। जब नूर मोहम्मद के में इंटरव्यू करे जो बदमाशी करी से चोरी करी से तो ओके चाही जहल में जाए के सो इसत ओको फर्दी रखेंग ना चाही करे के। जब हुक्दरात लूट के गईल है तो ओके चाही जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तो लो हाथ दर के ओमदा तू एन दे पेयर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के। सो खान अल्लाह ने दौर खान अब एगो छोटा आदमी घरे चियो पर दे दे खोई सके धोई सके आसान भले के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है। इंग्रिद बाउतर्स बोले हुफदरार के ना चाही फॉर देल करेंगे, एगो मलाइनी बोले है अधीन जोन फोर्स से तरह आसान भले ये छोड़ के चल गए हैगा। तो हम लोग के रेक्सटाट कहाँ है सूरीनाम में दोस्तों, अतिस बलखलक फॉर ओंस लैंड सूरीनाम दखात तुम एंड दैट इज कौन द वार है हम किसी को फोर ट्रैक न करीला। तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पइयो। हाँ तो कुतवा जो है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे हैं, जोर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया। और कोका जो सूही तो हुआ टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना, और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर से जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और कोकई ने तोर पाई जाए। तो नीदरलैंड के अम्बासाद जोन बा सूरीनाम में कुतवा के दी से ऑफिशियल दृक्ष पीसो। तो जितना आदमी दृक्ष फुरिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता, तो ओकर बाले में कॉल लग के मारा शीशे ही लगे जइयो। ऐसे बतिया है एट मिस ऑफ फन एंड फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मेड अ बास्ट basis wordt opgelegd voor de nieuwe hondenbrigade. Kebare me dosto, Suriname des ke bhaiya char mila pakdane yes ke phol pe paisa vetwas kartra bhaiya ha. Aur namua ham sulli bati. कौन कौन है ओ मां बाकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बताबे ना अति स्त्रिख है मेंस अति स्खाहिम जे तो के पकड़ी से वेत वास के चीज और वो बतावे है कि इतना सन्ना उच्चा दुगो और दुगो मरत है गा सुरिनाम के यहां के पोल पे उकले के बहुत ढेर पैसा पाई सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सुरिनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहां बंद करी से का फुट वेत वास पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बताबे उन दांग हम नमोन सुन चुकली के है मदा खा एक नहीं सेख ओमदत नहीं बकेंट इज एक वेल सेल्फ नीड इन द प्रॉब्लम एंड कोम मेंस तो ऐसे बात है और जो क्विकवारा भैया 537 किलो क्विकवा चोरी भैले कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भैले अरे भैया 280 किलो हां 280 किलो उजर का मिलले सी गौरी चरण गजरी हाँ आपको स्वागत करते हैं तो 280 किलो भैया सेफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर भैया तरीकी कर भैया दबाए धरे रहा कोका इन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सुरिनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंदर सुख करता होम पर स्ट्रात में बेड अंदर सुख इन द फुरते एक वर्दन मिर्दन ब्लॉक में कोकाइन और दुगो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते uiteindelijk uitkom op meer dan 80 kilo. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs. De wapens en wat apps. Maar ja, ik heb ja, kweek, chori hoige. Ik ook een waka hoi. हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज हाउ द वारहिट मींस द फॉरट्रोट है द ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम सुरिनाम सुरिनाम दी राग टेलकस वेग भैया दी राग टेलकस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi je aila bhaiya net buiten la to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek konte kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले 93 मीटर जोगी बोले 93 में बोले स्कूटर तो के टेस्ट करे पुलिसी ब्यूरो में से क्लाइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए 300 फील अन किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए है तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात 280 किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हम आपको सुनाई है बे बोले री सिपाही भी मांगे अपन नाखदीन के पैसा और सिपाही मांगे नाखदीन के पैसा ओहू सब मांगे हैगा ऑफ हेल्दरिंग एकर बारे में हमारे जनता हमारे दोस्तों तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे तो शासार शारसा सारधा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं
1: जब श्री राम देश आए थे हम

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रुकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपनी ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

मीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है, आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरी राम तो फॉल खंडे केयर। तो दोस्तों, आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकुली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जा।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत वस वालमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और न मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज़ कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तो मुझे क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और एस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था। हमारे प्यारे दोस्तों मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर चला गए जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो। जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जो उम्र लोग को, उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 36 5 20 20 47। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग और

उदित नारायण जी और अलका याग्निक मिलके आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाव हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए पावन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिए है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं। एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यारी मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा है, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में किसी एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है। वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर, ये भी है एक

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते राहत फतेह अली खान।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिट्टू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निगेती सशस्त को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी इच्छाएँ उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी निगती शस्त्र को 1966 का ये गीत ओपन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है। और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं थी फिर से 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

ट्यून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी चुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं, आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

0: 叔叔，叔叔，叔叔，
1: 叔叔。

छोड़ू।

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुई सैफ तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथ मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से स्थ आशा जी और जी लता आशा और लता मिलके गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगती निग्न से स्थ 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: कहती हूँ।
1: हो जाती आजादी।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा ज़रूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाए नेगती सईफ उनतक का ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम

होता है होता है सुनने वालों, अभी तो आपने सुने हैं विशाल हीरा जी की आवाज़ में, भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, और भौजी के का होवे है मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलिया से गलिया

0: We got the whole world shaking.
1: Shake it, baby, shake it. अभी आप सुने हैं और हम सोचते हैं कि आप अपने घर पर जरूर भी यानी शेक किए होंगे. और ये तो हमेशा होता है, यानी बड़ी तादाद में होता है सुनने वालों के. जब लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, संदीप बदलू जी की आवाज़ में आप खुद सुन लीजिएगा.

संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कि बुढ़वा क्या खोजे है और बुढ़वा और क्या करे है, ये हम आपको सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली के चोखा। और करेली के चोखा के बाद हरिदत्त जयराम जी आपको सुनाने वाले हैं पैसा के मैया पहाड़ चढ़े।

ऐसा के माई पहाड़ चढ़े अभी आप सुन रहे थे हरिदत्त जयराम जी की आवाज़ में। बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में बार बार बगिया में कोयल ना बोलत। और दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकुल जी को, सजन मोरे आचार्य।

आप सुन रहे थे वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में उड़ उड़ जाए निंदिया मोड़ी। आपके आ जाने से हम पेश करते हैं सुनने वालों रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद जी की आवाज़ में।

रायन मनोरथ और जॉयस सुपरशार जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। आपके आ जाने से हो गए तेरे हो गए अ मैशअप बाय वानिका रामसुको

हो गए तेरे हो गए मैशअप अभी आप सुन रहे थे वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। सुनने वालों यहाँ तक आप यानी सरासा हम देखे, हाँ हाँ हाँ, पहले ये गीत हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी। राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a blessed day.
1: मैं तुझे छोड़।
0: Until next Sunday.

0: Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: तो हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ आई द फिल्म ललकार नई खंडिंग ट्वेन सही मतलब कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो करी बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैव टू नास्ताल तकलीफ कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सरनामी संगीत खास करके हमारे फाहुन हिंदुस्तानी के माध्यम से और उसके बाद कुछ नए नए आवाज़ें हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बीच में कुछ ज्ञान के बातें है शेर शायरी भी है तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना मज़े लेते रहना जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैं थील फील लयस्तर प्लेजीर के साथ मैं तो यही आप सभी से हमेशा कहता रहूँगा कि हंसते रहो हंसाते रहो गाते रहो बजाते रहो और साथ ही साथ जियो और जीने दो रफ़ी साहब

महफिलें सजा लो हमेशा का तरह, प्रोग्राम और कार्यक्रम का शुरुआत। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सरनाम देश का एक महान गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद, श्री राम प्रसाद राम खिलावन जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे बड़े बड़े राजा।

वास सुरिनाम देश का महान गायक उस्तादों का उस्ताद और बैठन गाना का महान गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी। अगला बयान सुनन को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश के मेयर बकंत अल्स द फ्रोइटी फ्रॉ फ्रॉम द यार 60-70-80 ook in Holland jarenlang gewoond en heel veel gezongen. Bohoti Mashur Ganewali, Amare Suriname, des West Indies, Trinidad, Tobago, Jamaica, Ostadin, Srimati, Manraji, Lechmanjike, Beautiful Awaz, Mee, Ati Sundar Bayan, Aisa Mausam, Ke Mausam To, Bohoti Gambhir Hai Yaro, Enjoy the Music, Sarnami Sangeet.

शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाले सूरीनाम देश का बैठक गाने का उस्तादी श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना, वो भी त्रांगा बैठक गाना फ्रॉम सूरीनाम। ना टूटा दूध का दांत, क्या बात है।

शाबाश त्रांगा बैठ गाना फ्रॉम सुरीनाम ना टूटा दूध के दांत। अगला बयान हमने की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को और एक शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मैस्त्रो रामानंद राम गुण गाय के।

0: शाबाश शाबाश, मशहूर गायक हमारे सुरिनाम देश का रामानंद जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। अगला बयान एक जबरदस्त चटनी सॉन्ग है और गाने वाला है हमारे हॉलैंड देश का नौजवान कलाकार जो काफी नाम कमा चुका है हॉलैंड देश सुरिनाम देश अमेरिका त्रिनिदाद टोबैगो द वन एंड ओनली प्रिंस चार्मिंग शिवम राजाराम। और वो क्या कहती है कि चलो पीसे मसाला मैशअप।
1: वी ऑल नो दैट मैजिकल पाउडर दैट स्पाइस ऑफ योर फूड।

Shabbat, Shabbat, Pise, Mashallah, Meshav Bhai, Mashur Gayak, Hamare Hollandis Ka, Shivam Rajaram. अगला बयान आप सभी को सुनाने को जा रही है उभरती हुई कलाकारा तिफानी पूरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान सुरीनाम टूर चटनी बैठक द चाय टू मिक्स सॉन्ग.

शाबाश शाबाश तिफानी पूरन के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर चटनी बैठक गाना आपने सुना। अगला बयान के लेकर चलते हैं आप सभी को, एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ऑफिशियल सॉन्ग फ्रॉम 2024, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इरफान पन घटवा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग पंडटवा बाय इरफान फाउन हिंदुस्तान रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान दोनों नैना ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को स्टीफन रघुनाथ।

नैना मशहूर गाने वाला स्टीफन रघुनाथ के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। और ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला हमारे Den Haag, Ippenburg, Hollandese, Oostad ook Oostad. Maestro Ruben Pontjum, sonate hij, Chero na Chero.

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद रूबेन पंचम जी के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी प्रेम संगीत आप सुनेंगे चल बंबई रानी।

चल बम्बई रानी प्रेम संगीत के मधुर साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं और ये भी आज का ये जो सरनामी संगीत पहला अध्याय बैठक गाना का आखिरी सॉन्ग होगा और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को पंडित रायन कल्पू जी के मधुर आवाज में। ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, सही बात है ना।

शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे सूरीनाम देश का पंडित रायन कल्पू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कि प्यार किया तो डरना क्या। अगला बयान सुनाने को जा रहे है, नहीं अभी आप तो कुछ और सुनेंगे। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो जिस हाल में हो। फाउंड हिंदुस्तान रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जन्म

0: Info www.radiovanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: सुनने वालों, कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी के सेवा करने वाले हैं और एक बहुत सुंदर सा गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। विशाल हीरा जी आपको सुनाने वाले हैं, भैया ताके लड़की तो लड़की का करे है, आप खुद सुन लीजिएगा।

विशाल हीरा जी आपको सुनाने वाले थे भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, भौजी जो देखे तो क्या करे भैया पर गुस्सा आए। संदीप बदलू जी आपको सुनाने वाले हैं बुढ़वा का करे है हम बताए ना बतावे।

अभी आप सुन रहे थे संदीप बदलू जी की आवाज़ में बुढ़वा चिकना खोजे है, और बुढ़वा चिकना खोजे है के बाद चलिए ये गीत हम आप सभी के वास्ते पेश करते हैं।

सुन रहे थे गलियां से गलियां घूमल बदमुआ, और क्या क्या घूमे हैं आप खुद सुने हैं। दविंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में हम पेश करते हैं आजा गोरिया नवरंगिया के तरे तरे।

आज गुरिया नवरंगिया के तरह तरह अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में, यानी द लायन ऑफ बैठक गाना अमुआ बीने जाए।

अभी आप सुन रहे थे अमुआ बीने जाए, द लायन ऑफ बैठक गाना, दविंद्र सिंह सिवनाथ जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल जी मैशअप के साथ।

अभी आप सुन रहे थे वारिका रामसुकुल जी की आवाज़ में एक मैशअप, और दूसरा मैशअप ये हो जाए वारिका रामसुकुल जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे एक मैशअप वारिका रामसुकुल जी की आवाज में। जरा सा हम देखे तो जॉयस शिव प्रसाद के साथ में रायन मनोरंजन जी आपको सुनाने वाले हैं आपके आ जाने से।

इट्स विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन, और आपको सुनाने वाले थे जॉय शिव प्रसाद के साथ में रायन मनोरज जी, और म्यूजिक दिए हैं ज्वाला जी ने। प्रोग्राम को ज़रा सा हम देखें और आगे में लेकर चलते हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी।

सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, हमने पेश किए हैं सुनने वालों सविता सिंह जी आ रहे हैं प्रोग्राम में चटनिया।

चटनिया है सैया सिलवत पे पीसी। अभी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज़ में। केनत सालिक आपको सुनाने वाले हैं, और वो क्या सुनाने वाले हैं, राधिका, वाई यू लीव एंड गो।

छोड़। सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

की एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसानी पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

रजिंदर कुमार के आवाज का और रजिंदर कुमार का दिल के बाद अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाद पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनिक मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूलता प्यारी सी फूलता वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठी हुई है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए है और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

ओल्ड के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निकली 68 की बात है जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ। शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफो तक फिर सीफो पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, ओ माजी रे।

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ़ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहन सारे पर आप चुन है

0: सपने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपरमार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों,
2: गाने को है।
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी। पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगे। आओ नैतिके लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे। आज आप लोग को हम सिर्फ ओल्ड रात के सोहरा सफर का गीत हम आपको सुनाएंगे कि अगर जब आप सोते हैं या कुछ रिलैक्स करते हैं तो ये सब गीत आप सुनकर और इसमें अपना यानी कि खायुलिम खुद खनीतमें से ओल्ड इज गोल्ड।

मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तो कुछ मिली जुली गीत आपको हम आज सुनातेंगे हमारे यारो। तो हम चलते हैं अकियो के झरोके की ओर। तो अकियो के झरोके में क्या होता है, आओ सुना जाए।

आंखियों की झरोके से एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है। इस फिल्म में सचिन ने और रंजीता ने काम किए हैं हमारे दोस्तों। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला गीत की ओर। चोरी हो गई है और चोरी किसी को दिल हो जाते हैं, चोरी किसी को पैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बात है।

और नींद की चोरी हो गई रात, और रात के बोले है सपना निनिया चोरी हो गई, क्यों सूत ना पावे, इतना प्यार हो गया है कि सपने क्या, और बोले है रात के निनिया बोले वो चोरी हो गया भैया, तो इतना प्यार करना कि रात की जो निनिया है वो भी उड़ जाए। उसके बाद हम चलते हैं, एक फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है कल की आवाज, 1992 का ये फिल्म है और एक हिट सॉन्ग है, फिल्म का नाम है कल की आवाज तुम्हारी, और गीत को किसने गाया है आओ देखा जाए दोस्तों। इतना बात है कि इस गीत को इस फिल्म में काम किया है अमृता सिंह और धर्मेंद्र जी काम किया है, और आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है।

door कल की आवाज मूवी का नाम है और इस फिल्म के नाम है कल के आवाज 1992 का ये सॉन्ग है जो आपके लिए हमने चला दिया। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहते झलक रही है। हमारे दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। तो आपको हम बता दें तो हम चलते हैं इस गीत की ओर। मेरे दिल ने जो मांगा नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। फिल्म के नाम है रखवाला। 1971 का ये गीत है और यानी कि मूवी के नाम है रखवाला। मेरे दिल ने क्या आपको दिल ने जो मांगा है उसको मिला है या नहीं मिला है, आओ सुना जाए।

और मेरे दिल ने और जो मांगा वो मिल गया, क्या आपका दिल जो मांगा है उसको क्या मिल गया है हमारे दोस्तों। हमारा यही आशा उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि आपका दिल जो मांगते हैं उसको बहुत जल्द मिल जाए, इसलिए कि इस प्यार से मेरी तरफ जब देखोगे तो सब कुछ आ जाएंगे। द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका याग्निक का फिल्म चमत्कार।

और इस प्यार से मेरी तरफ न देखो भैया, नहीं मुझे प्यार तो जरूर हो जाएगा। टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानोल का याग्निका, फिल्म के नाम है चमत्कार के बात। चलते हैं और अगला गीत के ओर, अपनी मोहब्बत को कभी ना मारो और उसे कभी कोई दुख न दो। नाइटिंगेल लता जी और किशोर दादा के आवाज में इस गीत को हम चलाते हैं। मूवी का नाम है लैला, लैला और मजनू का जों है।

और दीवाने को पत्थर से कभी मारना नहीं चाहिए। तो इस गीतों से मुझे याद होता है कि कोई ज़माना में मैं भी 16 बरिश के था। और क्या आप भी कभी 16 बरिश के थे? अगर जो कभी 16 बरिश के थे तो आपके ये गीत सुनना चाहिए और खूब ठीक से सुनना चाहिए और अपने आप को लेके चलो चलो जब तुम 16 बरिस के थे। और उस समय पे 16 बरिस के जब तुम थे तो उस जमाना में उस समय पे आप क्या थे?

बाजू बाजू

You chewed up, but much like this, you.

और दोस्तों सलाम ही सलाम के ओर हम चलते हैं। एने तेरे नीले नीली आंखों का और ये सॉन्ग है फिल्म के नाम जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यानी जाने अनजाने देखते हो सीवन का और पद्मा शर्मा मुझे नाई दिन गई लता जी का ये सॉन्ग है।

0: और तो वा ये मतवाली चाल, और इस गीत को आपनी फिल्म का नाम है पत्थर की शरम।
1: प्यारे गीत भी सुनाएंगे, तो आज लो दर्द भरी गीत आप लोग यहाँ से सुनिए।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस याद ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहेल उर्मेन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, अफोर खबरों का हर सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हेल फिल्मेंस सैन खसकाई दे प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

रिका दोस्तों दर्द भरी खबरों का हर सौ आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

आम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है। तो आपको खबरों का हर सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई।